0: September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा. वे आ जा तो मैं नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
1: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
0: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
1: 6478355294 647-835-5294
2: नाले चोपड़िया नाले दो दो
3: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाय पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
2: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो
3: एक बार आओगे बार बार आओगे
2: अनबीटेबल प्राइसेस सेल ऑल टाइम दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
1: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे. Mortgage the King, Girish Sharma.
6: Residential, commercial, refinancing, debt consolidation, second, third mortgages, private funds.
5: सब ले याद रखो Girish Sharma. Pre-approval ही नहीं, closing तक देंगे पूरा साथ. Dealing with all banks.
6: Call 647-606-8110.
5: Or visit sharmamortgages.com.
1: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ली आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251
7: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ
8: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ
1: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
8: 416-717-2929
1: 416-717-2929 ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ

0: आवाज हर रोज सवेरे 9 to 10 बजे तक पंजाब की मिट्टी की खुशबू बिखेर दी आवाज डील ऑफर्स गीत संगीत पेश कर दी आवाज तुहाडी निखर दी सवेर नो सजरी सवेर बनाओ दी आवाज ए है रेडियो आवाज हर रोज सवेरे 9 to 10 बजे तक रेडियो आवाज.
1: All advertisements are paid. Awaz the Voice does not take any responsibility for any paid advertisements during this program.

0: Hamilton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milne ja reha. Soch reha si Tim Hortons te baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: Oho. ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600
2: ਪੈਂਡੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ
3: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ
4: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਮਾਉਂਟਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੋਵੇਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tavakitchen.ca 905-790-1699
5: 50 to 60 बंदे फिर भी कैटरिंग मतलब बहुत ज्यादा सी सानू कोई थोड़ नहीं आई असि रिकमेंड करते हैं तुसी भी कैटरिंग कराओ तवा किचन तो थैंक यू सो मच
4: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटलैश एंड बोवेडा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tavakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 tawakitchen.ca
6: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
7: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
8: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa!

तबले आला बंदा पाकिस्तान तो आ रहा स्पेशल भाई वास्ते और रिदम दे इदां दे मुंडे आ रहे हैं तुसी सुन के हैरान होवोगे जिहड़े के टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड लेवल दे मजीशियन ओ आ रहे हैं। तबले आला मुंडा मैनू मैं याद भुल जांदा कि तबला उन्होंने बजाया और जिस वे तबला उत्थे खड़के ना रिदम दे उत्ते जिहड़ा मुंडे ने पाइया फिर धमालां पूरियां ते देखियो फिर तुहानू नच्चण वास्ते ऑटोमैटिकली मजबूर कर देगा। हंस राज हंस दियां कवालियां ते राती इश्के दी होई बरसात ते हरजीत जी सारी रात भिजदे रहे।

0: वाह भाई वाह।
1: ओ शिव दी किताब वरगी पाश दियां गल्लां दा शोदाई।
0: बड़ा वधिया गीत अभी ये तो कमाल करते। ये गीत उथे गाओगे फिर?
1: हाँ जी गावांगे जी। गीत काफी मिलियंस दे विच चले हुए गाने नहीं।
0: हाँ बड़े गीत मकबूल गीत है। हाँ मैं गीत रेडियो अगे भी लाना होना जी। और ये गीत भी असी स्पेशल तौर पर कुलविंदर बराड़ साहब उथे रिक्वेस्ट करांगे, जरूर साढ़े चौन वाले जरूर सुनाओ ये गीत। वाकई गुरविंदर बराड़ साहब अपने शहर दे विच तुहाडे वास्ते मेला कीर्तियां विच हाजिर होणगे। सुनियो ध्यान नाल।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: आज खुश तबाद हो गया
3: था। वो ता होना ही है। जब तक टिलों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, तेरी नक्ता बन दाई है।
2: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
3: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिए
4: क्या कह रहे हैं यहाँ पर
3: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
3: पर टिलो वीडियो ते जो मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड

0: ਕੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
1: ਰੋਕੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਯਾਰ?
2: ਓਏ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸਪਰਟ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: ਵਾਹ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਈ ਮੋਨਾ ਜੀ ਦਾ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,
3: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੋਰ ਯੂ ਦੀ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ।
2: ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-500-1509 ਤੇ।
3: ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੋਰ ਯੂ,
2: 416-509-1509
3: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Sipal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan tusi visa services Sipal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
6: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा।
7: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 647-349-3521 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन सिल्वर हट।
2: जी दोस्तों, तुसी जुड़ चुके हो अपने मनपसंद प्रोग्राम सारंग दे विच। मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत माहल, राजबीर बोपा राय जी भी कुछ समय तक लाइव ऑन लोकेशन करन पहुंचे हुए ने कि साडे नाल जुड़ जाणगे। अज शुक्रवार का दिन है, बड़ा ही खूबसूरत जिहा दिन हैगा, मौसम भी बड़ा अच्छा हैगा। असी परमात्मा अगे अरदास करदे हां कि यह शुक्रवार का दिन तुहाडे सारयां लई तंदरुस्तियां लैके आवे, खुशियां लैके आवे, एक चंगी सोच लैके आवे। यही असी दिलों सारंग दे टीम वालों पूरी वालों दुआ करते हैं। दोस्तों, जिंदगी विच असी हर रोज़ किसी ना किसी दौड़ विच भज्जे रहिंदे हाँ। कोई कमां वल भज रहा है, कोई पैसे की दौड़ विच भज रहा है, कोई सुपने नूं पूरा करन दी दौड़ विच भज रहा है। सो चंगा भी आ, भज्जना भी चाहिए गा, पर आपां कई बार ना जिहड़े अपने आसे पासे कुछ चीज़ां होंदियां असी उन्हां नूं इगनोर कर दिंदे हाँ। हमेशा किसी की हैल्प करया करो, जे कोई तुहानूं लोड़वंद दिसदा गा ते किसी की आपां पढ़ाई दे विच मदद कर सकदे हां, किसी नूं फाइनैंशियल तौर पर मदद कर सकदे हां। सो इदां दियां खुशियां भी लभदे रहा करो। सो अज असी बेशक गड्डी चला रहे हो तुसी, बेशक तुसी अपने घर दे विचों, तां अपने पालों सिर्फ एक गल जरूर कहना, जो कुछ मेरे कोल है मैं उस विच शुक्रगुजार हाँ, ते जो कुछ हासिल करना है उस लिए मैं अज तो ही कोशिश करांगा। एक कोशिश ग्रैंड फर्नीचर ते भी हो रही है, अज दा शुक्रवार दा दिन है, जिहड़ा ग्रैंड फर्नीचर तो साडा लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम हो रहा है, उत्थे तुहाडा शुक्रवार इन्ना क ज़्यादा वधिया बनन वाला गा कि तुसी सोचा भी नहीं होना। मैं कोशिश करदा राजवीर जी नूं लाइन ते लैण दी, जे राजवीर जी पहुँच गए होणगे। राजवीर जी, सत श्री अकाल।

0: पहुंच चुके हो जी।
1: सत श्री अकाल भाई जी, सत श्री अकाल, आवाज ठीक पहुंच रही है
0: जी? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जी।
1: मैं तो लाइन ते ही हां भाई जी, मैं तो हमेशा लाइन ते रहने की कोशिश करदा
0: जी।
1: ਆ ਚੁੱਕੋ, ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਟਵਾਲਾ।

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मॉडल दिखती, उम्मीद कर रहा इस बार भी किसी आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं लाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा तो मैं लाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
4: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने.
3: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा.
4: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी. जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है. हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते.
5: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
4: 416-509-1509
5: और विजिट insuranceforyou.ca.
6: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com. लाइव

0: कनाडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।
3: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one get one free every day sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs. Maza lavo Sunday no paratha plate, Monday manpasand kulcha plate, Tuesday chana bhatura, Wednesday lajawab veg thali, Thursday yummy haka thali, Friday maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian this sariya hi locations te. Dining, take out and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab Simply Indian.

तीन घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सिरड़े एक तो लैके शाम दे चार बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पौंदे हो। देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नू 416-457-3381 416-457-3381 जां तेजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो सब डे जबीक तहाडे अंग संग चलो एम 530 ते मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह की तहाडी मॉर्गेज रिन्यू होने वाली है। तुसी प्राइवेट मॉर्गेज स्टक हो गए हो ते बद इंटरेस्टेड पे कर रहे हो ए तहाडी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्टेड ते गारंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी तहाडी बनवा देणगे ते $3500 तुहानू कैश वापस भी दिता जाएगा जां फिर बिजनेस लोन लेना जां लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी है अज ही कॉल करो प्रभदीप सिंह 416-710-7524 416-710-7524 ते प्रभदीप सिंह होरां नू।

0: 8500 जी वेलकम
1: जी।
0: हाँ जी
1: मतलब ये लगता जी बल मतलब जो अपना कहते हैं कि जोर ओने बारे ना क्या हो
0: जोर नू कहा गड्ढा खिदना थे हद हो गई यार प्रोग्राम पंजाबी लैणा आ पंजाबी साडी हजे कहिंदा जी पंजाबी पढ़िया करो पंजाबी सुनाया करो वल दा मतलब नहीं दस सकिया बंदा यार की करिया जावे रब। 2825 कहिंदे वल जोर जोर दसना वाह बल्ले तेरे भरावा आ तां भाई खिचता काटा वल दसना
1: गुड हो गया वल दा मतलब मैं जेड़ा समझदा आ भी तरीका जोग तो कोई ढंग कह सकदे आ ना।
0: अच्छा चलो ठीक है देख लेने बाई जी जेड़े कहिंदे जोर जोर दसना झटका लाउणा कोई ओहना बारे भी दसो। चलो एक होर कॉल लैणे आ 8198 जी वेलकम 8398 हैलो हैलो हैलो सत्या जी सत्या कौन बोलदे हो?
2: मैं सतनाम बोल रहा गुस्से तो।
0: अच्छा गुस्से वाले की हाल आ
2: जवागत दस गए हुण तां तुहानूं दसणा पैणा मैं तां इही गल कहणा सी।
0: अच्छा चलो मैं भी दसदा
2: चलो तुसीं साडे तों वड्डे आ जी।
0: थैंक यू थैंक यू भाई नहीं भी इन्ने वड्डे वी नहीं जिन्ने कही जाने हो। ओके
1: वेरी
0: गुड सर थैंक यू वेरी मच इन पक्के स्रोते ओदो तो भी सुनते हो तो हम नवी नू भी सुनते हो बहुत मेहरबानी नवी नी सुन दिया भी वाल है जेड़ा ओदा वाल। अच्छा नवी
1: का वाल भी ओही है
0: जेड़ा मेरे वाल है।
1: तरीका
0: क्या बात है हाँ भी किवें करना है काम है ना जेड़े सज्जन कहते जोर जोर पता नहीं कित्थों लाउण लगे ओह मनजीत गिल साहब होल्ड एक सेकंड करियो मैं एक दो कॉल ले लवा फिर ओ बाद वल कढ़दे आ जिहड़ी सेल तुसीं लाउणी आ ओहदे भी वल कढ़ देणे आपां जी 4635 चमकीला साहब कहिंदे प्यार दा तैनू मैं वल दसना
3: अगले टप्पे जन दसे पाइए तेन एक दे तवीत वांगू रखना
0: क्या बात है तुसी दसी असली गल ते बहुत सोहना ते तुहाडे वास्ते भी शुभ छावां ते किस तरह बाल बच्चा ठीक है सब
3: बड़ी
0: मेहरबानी प्रोग्राम एक कॉल होर लै लईए फिर मनजीत जी नूं लैणे आ फिर आपां अगे वधदे आ 1297 हैलो सत श्री अकाल
3: जेड़े लोग जोर लाने वाला गल कह रहे ने बल दूजा वा हिंदी च या पंजाबी च बल आंदे जोर लाना बल ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਬਾਹਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨੀ ਹਨਾ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ
0: ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨੀ ਇਕੱਲਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਬਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਵਗਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਵਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਬਲ ਦੇਖੋ ਬਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲ ਬਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਬਲ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਬਲ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਣਾ 905-600-7373-37 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ PhD ਕਰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਵਕੀਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁਣੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ

से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। इस गीत नाल टुकदा शेर है, बड़ा खूबसूरत, किसी सज्जन ने भेजा, कहिंदा किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं।